ये कहानी पसंद आई होवे तो इस तरह दिया होड़ी वीडियो सब्सक्राइब करो।

0: मैं जा सकता हां? मैं हुन अपने परिवार नू देखना चाहुंदा हां।
1: ओ तुरंत उन्हां नू देखण लई दौड़िया। ओ बहुत चिंतित सी कि किते ओ जिंदा भी हन या नहीं। जदों उसने उन्हां नू देखिया तां उसदा दिल बाग बाग हो गया।
0: मेरे प्यारे, तुसी ठीक हो? मैं तुहाडे बारे बहुत चिंतित सी। रब दा धन्नवाद, तुसी ठीक हो।
1: ओ सिर्फ जिंदा ही नहीं सन, सेहतमंद भी सन। असल विच ओ पहला नालों भी ज्यादा तंदुरुस्त लगदे सन। उसदी पत्नी ने कहा,
2: जदों तुसी गवाच गए सी, सारे गवांडियां ने सानू भोजन प्रदान करन लई योगदान पाया। फिर उन्हां ने सानू सिखलाई दित्ती ता जो असी कम कर सकिए। साडे सारियां दी कमाई नाल हुण असी बहुत सफल हां। साडे कोल पहलां नालों किते वध है। तुहाडे लई चिंता करन वाली कोई गल नहीं सी।
1: पत्नी दी इह गल सुन के ओह बहुत खुश होया। उसनूं गुरु जी दी खेड समझ आ गई। उसने समझ लिया कि गुरु जी ने सारा प्रबंध इसलिए किया सी ताँ जो उसनूं विश्वास होवे। उसनूं हुण विश्वास होया कि रब ही उसनूं प्रदान करदा है। ओह गुरु जी दी खुशी अते शुक्रगुजारी नाल दुबारा मिलन गया।
0: हे सच्चे पातशाह, तुसी मैनूं नरक विच्चों कढ के मेरियां अखां सामने असलियत लिया दित्ती है। मैं अपनी सारी उम्र अपने परिवार लई भोजन दी चिंता विच गुजार दित्ती हुंदी। इस दी बजाए तुसी मेरी जिंदगी नूं बर्बाद होण तों बचा लिया है। मैं असल विच उन्हां दी सफलता विच इक रुकावट सी अते जदों मैं दूर सी तां हर चीज़ दी बहुतात सी। हुण मैं उही करांगा जिवें तुसी मैनूं सिखांदे हो। तुहाडी रहमत सदका मैनूं सच्ची समझ ते आनंद प्राप्त होया है।
1: सारी जिंदगी परिवार दी चिंता विच बतीत कर दिंदे हन। ओह अपनी जिंदगी दा असली मकसद भुल जांदे हन अते राह तों भटक जांदे हन। लोड़ है कि हुण असीं गुरु दी सिख्यावां नूं पढ़ीए अते अपनी जिंदगी विच अमल करिए। सेवा अते सिमरन करन नाल ही असीं इस संसार समुंदर तों तर सकदे हां। हुण तों ही अपना ध्यान गुरु वल लाइए अते अपना जीवन सफल बनाइए। गुरु जी दी उस्तत करन नाल ना सिर्फ असी अपार आनंद प्राप्त करांगे पर जिंदगी विच भी बरकतां प्राप्त करांगे।